0: जो जो पाथ नेपाल सम्पचिन्छ सौ पी खुद यन लाथो चतुर्दशी थो रेडियो नेपाल ख आन्य दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिव एन्टोनियो गुटरस दथि नाप्ला ज्याचुगुदु संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चे छकको महासभा या उच्चस्तरीय महासभा भोटिकात न्युयोर्क ठेङ्का डिमा प्रधानमन्त्री शाह महासभा त कख्यान्य राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय थौ सुथेसिया पेता इजुए छिङ्यागु मिनेटे महासचिव गुटरेस नापा नाप्लाना दिगु ख महासचिव गुटरेस भोटेकोसी खुसी बा या विपद त तन्जनिया क्षति या ताकया गाउँको दुःख पङ्का दिगु दुसा वेक्लान जलपायु मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपा नापा एकबद्धता पोङ्का दिलसा वेक्ला ल्याम नेपाली प्रतिनिधि मण्डल या त चोछा दिसे थ सन् 1978 पर्यटकीय कथा नेपाल वया गुलुमङका दिल महासचिव गुटरेस पस निवृत्त जुई थुङ्कानी नेपा या त ग्वाली याना चोनेगु बचना पापङ्का दिल। प्रधानमन्त्री शाह नेपा याता कया सद्भाव्य नीति महासचिव गुटरेस याता शुभ्या देशना दिशे वेकया कार्यकाल तालामा धका लसहना देशना दिल बोटेकोसी विपद नेपाल त धङ्गु क्षति फयाचोने मागु नेथना दिशे प्रधानमन्त्री शाह हिमताल त जैगु जोखिम अझल दुगुली थुजागु खखे ग्वाली बिता इनाफेना दिल। बर्खा ओ सहकाल या ड्य देवराज इन्द्र या पूजा आज याना थ परम्परागत कथ इन्द्र जात्रा यनिया पनि हना सङ्गुदु दपति क भाद्र शुक्ल चतुर्दशी या दि थो नख ये यल खोप धुलिख्य दोलखा नापाया थासे हनी भाद्र शुक्ल द्वादशी या दि हनुमान ध्वाका न्ह धार्मिक विधि नक्सा इन्द्र ध्वज नापाया ल्यसी थने धुङ्कानी न्यायगु थो नख थिथि कथ या प्याख रथ यात्रा ड्य देवी या पूजा आज या ना च्यानु त गहनीगु चलन्दु थौ या दि मु दि कथं काइगु इन्द्र जात्रा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हनुमान ध्वाका दुगु गैदी बैठके मनाचोमा देवी या कथ हनादुमा देवी कुमारी गने ड्य व भैरव या ख या त सोया दिगु चलन्दु इन्द्र ध्वजया ल्यो सिन्थने धुङ्कानी न्यायगु जात्रा न्याङ्क भकु प्याख महाकाली प्याख लाखे प्याख दश अवतार व देवराज इन्द्र या बहान एरावत किसी या ची या कथा पुलुकिसी प्याख लुहिगु चलन्दु भाद्र शुक्ल चतुर्दशी या दि अनन्तनाथ भगवान विष्णु या पूजा आज यैगु चलन्दु छ अथे या नाथो दि खुनु अनन्त चतुर्दशी न या कथन हनिसा थोए दिन कुनो चोखो नसा जोल नया चोखो सुकाखे अनन्त मन्त्र याना चिना बिगु व चिना बिउसा बानलाइगु सुवा दैगु थैगु भलसा नापा काई। प्रतिनिधि सभा या बैठक सँग फोहोर मैला व्यवस्थापन विधेयक 2083 दथे विचायामा धैगु प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृत जुगुदु मेगा बैठक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल फोहोर मैला व्यवस्थापन विधेयक 2083 दथे विचायामा धैगु प्रस्ताव निभया दिलसा फोहोर मैला वर्गीकरण या धुङ्कानी गुइङ्याको प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन ल्यान्डफिल साइट यहे सिधे धुङ्कीको याना व्यवस्था जुइगु लम्साल धया दिगुदु सरकार र स्वया भोटेकोसी खुसी बास लिचोलापी मस्तेगु नीति विशेष संरक्षण पुनस्थापना पुनर्मिलन प्राथमिकता नापाए याना चुङ्गु धया दिगुदु प्रतिनिधि सभा मिगया बैठके महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी थकालिपी मनु अपाङ्गता जुपी मनु मिसा मचा भुइँ कुपी मिसा त पथे दुपी मिसातेको सुरक्षा व संरक्षण या नीति आश्रय केन्द्र त पलिस्ता जुया चङ्गु जानकारी बिया दिलस अध्ययन बैठक या विशेषले सांसद त्यसा नेपालले निछोको जोखिममा जागो हिमताल दुगु व जलवायु उपाय हुने नेपाल न्यून योगदान दुसान उकिया गम्भीर लिचो फयाचोने मागुले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा बोतिकया दिमा प्रधानमन्त्री शाह जलवायु न्याय व हिमाल संरक्षण मुद्दाता थ्याबी मागु धया दिगुदु अध्ययन मोहनी सुन्ती लिकोया चोङ्गुली यसँग पिने वनिगु व धुहाँ वैपे मनोतेगु मोमो जुया चोङ्गुली जोखिममा जागो सडक हो गात निरीक्षण याना वैकल्पिक लम्पुया पूर्व सूचना मागु यातायात व्यवस्थापन या तयारी इले या धुङ्केता न सांसद पिसम भव्या दिगुदु अध्ययना सांसद पिसम कोस बिगु चलन नापा मिसादथि जुइगु विभेद कुरीतियातन हङ्कौसे यौनजन्य अपराध नियन्त्रण मिसा सुरक्षा सुदृढीकरण व युवा पलायन ढिकेगु सिप लजगाय फाता बोलङ्के मागुली ब ब्यादिगुदु अध्ययन बैठकै सांसद पिसा पुरातात्विक व सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण या कथन दुगु नेपाली श्रमिक विद्यार्थी सहजीकरण किसान नापाया पिन्ता किसान पिन्ता इलेहे साय व्यवस्थापन कानुनी हाठ्या अफुके मागु वैकल्पिक कनेक्टिभिटी तब्याके मागु नापाया आना चङ्गु थिथि खया विशेष सरकारी ध्यान कोसाला दिलसा सांसद पिसा खापा जुपिन जेन्जी ओ सय छेन्ज नापा सरकार यागु नि सुङ्गु धलया सहमति अक्षरस छेला बुलाया यता सरकारी ध्यान कोसाला दिगुदु राष्ट्रिय सभाया अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालना आ वया चुङ्गु वालम बोलङ्गु जोखिम म याता प्रतिकार्य नीति तयारी अवस्थाके चुनेता उचौँ ब्यादिगुदु राष्ट्रिय सभाया मिगया बैठकी अध्यक्ष दहालम फुक्क मनु नागरिक समाज स्थानीय निकाय स्वपुतैगु निकाय दति थ दति समन्वय सहकारी उपकेता व सम्भावित हाच्या विशेष मनोतेता सुसूचित याकेता न स्वपुदुगु निकायता उचौँ ब्यादिगुदु बैठकै लोक सेवा आयोगका आर्थिक दन 2081-82 अध्यक्ष प्रतिवेदन व विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आर्थिक दन 2082-83 अध्यक्ष प्रतिवेदन दुत बिगुदु बैठकै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय थासा अर्थमन्त्री डाक्टर सोगरिम वागले लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रतिवेदन दुत बियादिगु खसा थ्यानिया राष्ट्रिय सभाया मिगा बैठकै सांसद पी नापाया तपाईँका न्यासलिसासँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक कुमार शाह उपया चोङ्गु महँगी हाकुगु बजार नियन्त्रण नीति सङ्गतलन सरकार या सङ्गतलन तह या सरकार दति समन्वय व बजार अनुगमन या त लिचो लाके मागुली ब बिया दिगु दुसा थ्याना बैठकै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता भोटे कोशी खुसी बासन लिचो लागु लागा संक्रामक लोए बोलना चुङ्गुली थुकियाता दिकेता सरकार आपला प्राथमिकता नापा ज्याता इनापेना दिगु दुसा थुया निहया बैठके सांसद पिसा मड्डीको वया चुङ्गु वाल याना खुसी बा चल या जोखिम उपगुली सतर्कता क घाता सरकार या ध्यान कोसाला दिगु दुसा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा पिथङको सूचना यात्रा ध्यान तसै मन्त्रालय प्रदेश स्वास्थ्य सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान व सङ्घीय अस्पताल या त सम्भावित जोखिम हो या त ओलिचो लाके त प्रतिकार्य या नीति माग व्यवस्था मिले या त इनाप्यागुदु मिगनिसे थिथि थासे वावया चुङ्गुली जुई फैगो हाछ्याता ध्याने तया नेपाल प्रहरी थिथि राजमार्गे चानेस्या इले सवारी जोल ह्याकी गुली डिका त अगुदु प्रहरी प्रधान कार्यालय मिगन हिने सार्वजनिक याको सूचना कथा पृथ्वी राजमार्ग नापान थिथि राजमार्गे चानेस्या इले सवारी जोल ह्याके गुली डिका त अगु खसा पृथ्वी राजमार्ग जुया न्यायको सवारी जोल मिग सनिलो च्याता इल निसे सुथेस्या याता इ तक्क डिका तगु ख प्रहरी प्रधान कार्यालय या कथन जे नियङ्क मनसुन सक्रिय जोया चङ्गुले सिद्धिचरण लोकमार्ग मिग निसे असोज 12 गते तक्क सनिलो खुता इल निसे सुथेसिया खुता इ तक्क अथे याना न्यासी जुपे मनुते गु नीति चानेसिया इले ले जुइता न ले मजुता न इनापियागुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल जेन्जी आन्दोलन असै छेज व खापा जुपिन्त हेलुवाया कथ छात्रवृत्ति नापाया ज्याझो या विशेषण सल व्याका दिगुदु सिंह दरबारे शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मिग खापा जुपिन जेन्जी नेपाल जेन्जी सय छेज कल्याणकारी समाज व जेन्जी समन्वय सङ्घर्ष समिति मङ्का पुच नापा मन्त्री पोखरेल सल व्याका दिगु ख नियमित कथा वा वैता सने धुङ्कानी ए सोनी ग नापा या त ध्यान तसै ए महानगरपालिका जोखिम जागु थासे विद्यार्थी पिन्ता निगरानी उपकगुदु जुइफैको हाठ्यास व खुसीबा डुबानस मचा मस्तेता तापाकेता भौतिक सम्पत्ति खे क्षति मजुई केता निगरानी उपकागु महानगरपालिका धागुदु नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी या शोकगु बैठक स पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी या त वरिष्ठ नेता के लियगुदु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम संवैधानिक निकाय कार्यरत पदाधिकारी पिन्ता दोहोरो सुविधाका मधैगु याना कानुन भिङ्केता सनागु ध्यादिगुदु राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति हिग सिंह दरबारे चङ्गु संवैधानिक निकाय दुचपिनीको पारिश्रमिक सेवाय शर्त व सुविधा नापाया नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 उप सैद्धान्तिक संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्य सलस सम्बोधन याना दिशे मन्त्री गौतम संविधान कथा हे संवैधानिक निकाय सेवा निवृत्त जुग विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी नियुक्त जुगको प्रावधान जुगु लिन दोहोरो सुविधा नियन्त्रण नीति विधेयक पाके कानुन तर्जुमा यायता सनागु कनादिगु ख संघीय संसदीय संसदीय सुनवाई समिति सरकार सन् थिथी झिन्सोङको देया नीति सिफारिस जुपी प्रस्तावित राजदूतको सुनवाई प्रक्रिया न्याक गुदु समिति मिगचुङको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतको सुनवाई या प्रक्रिया उलेजा यासेन झिनुतक या इबिया उजुरी आह्वान यागु कोची गुदु समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ प्रस्तावित राजदूतको बायोडाटा अध्ययन वेकपिस दुत बिगु ज्याधल उजुरी या त मु लिदंसा देखा सुनाई प्रक्रिया निहजा कागु ध्यादिल कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी मचा ल्यासे अधिकार व नेतृत्व या त सुनिश्चित या मागुले बबिया दिगुदुसा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपाल गोसा गोगु मिगनिसे येले न्यागु एसिया प्रशान्त व आदिवासी अपाङ्गता जुपी मिसा व मचा ल्यासे तेता सुनु यङ्क जुइगु क्षेत्रीय सम्मेलने वेकला आदिवासी अपाङ्गता जुपी मिसा व मचा ल्यासे दथ्वी अधिकार सहभागिता नेतृत्व या त सुनिश्चित याके त उमिगु मुद्दा या त नीति व निर्माण या तह त कलिचो लाके मागुली बिगु ख देशम पिनेया बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ दथ्यु व्हाइट हाउस जुगु नाप्ला ज्यासन थिति कोचिगुदु नाप्ला ज्यासन व्यापार प्रविधि कृत्रिम बौद्धिकता महतन्जाको खनिज व क्षेत्रीय विषम खते त मु कथन हुनेको बिबिसी थाहाको दुसा वार्ता न्या अमेरिका व चीन व्यापार युद्ध विराम या त निलातना वैगु जनवरी दस्तक लिङ्का तेगु सहमति यागुदु राष्ट्रिय सुरक्षा खेलिचो लाकिगु कृत्रिम बौद्धिकता नापाया चाका विशेषण निगु पक्ष दति सूचना कालबिलाई यागु संयन्त्र देखेगु विशेषण सहल जुइगु अमेरिकी अधिकारी पिन्छ थाहागुदु मौसमीय जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश या मह थासे तस्कौँ वा वैगु सम्भावना दुसा लुम्बिनी गण्डकी प्रदेश छगुनीगु थासे आप्लाङ वा वैगु सम्भावना दु मधेस प्रदेश छगुनीगु थासे तस्कौँ वा वैगु सम्भावना दु मधेस प्रदेश व कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश तराई लगाए छुन थासे फे नापा वैगु सम्भावना दुगु लिन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग सचेतियाको गु दुसा अथियाना कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश पहाडी हो तराई या छगुनीगु थासे व कर्णाली प्रदेश पहाडी लगाएको थासे मधेस प्रदेश छुन थासे सुदूर पश्चिम प्रदेश पहाडी हो तराई लगाए छुन थासे मलना पान लाप्चा तोया मध्यम तकया वा वैगु सम्भावना कुबिगु मौसम विभाग या थापुदु वङ्गु निपेगौस ये सोनिगु याको आज निगु फुटी निगु डिग्री सेल्सियस दति चोना दासा थौ ये सोनिगु याको आज नि सोङ्गु निसे नि न्यागु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु दुकुमा दु थौ सुथे ये सोनिगले न्याता इजुया पी नेगु मिनेटे लुया वगु निबा सनिल खुता इजुया निगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेनादिस शुभ
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
1: खहरे खोला लेकमा परेको पानीले ल्याउने बाढी हो तपाई बसेको ठाउँमा वर्षा नभए पनि अचानक बाढी आउन सक्छ पहिरोले थुनिएर बनेको ताल फुटेर पनि बाढी आउने गर्छ खहरे खोला भिरालो जमिनमा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने गर्छ खहरे खोलाले ढुङ्गा माटो लेदो बगाउँदै ल्याउनाले यो निकै शक्तिशाली हुने गर्छ बच्ने उपायहरू लेकतिर पानी परे नपरेको याद गर्ने खहरे खोलाले बाटो बनाएको ठाउँमा नजाने त्यहाँ वस्तुभाव नचराउने बाढी आएको बेला खहरे खोला बिना कुनै तयारी नतर्ने खहरे खोलामा बाढी आएको थाहा पाए लगत्तै तल्लो बस्तीका मानिसहरूलाई खबर गर्ने
3: बर्खायामसँगै बाढी पहिरो विपदका घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यसैले विपदबारे सचेत बनौ, विपदबाट जोगिन पूर्व तयारी गरौं। जनहितका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल।
4: समय सन्दर्भ कार्यक्रमबाट मुकुन्द भण्डारीको नमस्कार। मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ मित्र मोहम्मद असलम।

छु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिरी राङनिदा ढेनमुला गाइन्दिरा थिङ काइब्लोन बालेन्द्र साहसे निस्टुई नि घण्टा नाङरी जाम्बुलिङला खाजी दमान घ्लारी हतियार दोना लाबारी खाम्बा जाम्बुलिङ थेन गोर्की सानम बोन्दा सोबारी तोबा सेकादे पिनबारी लुसिला बहाना सोबारी आताबिसी सुङबामुला संयुक्त राष्ट्र संघला ब्रेचुई गिक छ ग्रेन ह्वाल्डी तिनी लेङ्मो थान्छिबान काइब्लोन साहसे जाम्बुलिङरी युद्ध लाबारी तोबा से दोना लाबारी पिनबारी सजिस लो सेन खामला तसाई चाबा से दोना लाबारी समस्या मुला बिसी सुङबा मुला याङ खाजी बैनन युल्थेन महादेशता दोस पिनबारी चु घ्लारी खाबा आहिन याङ जाम्बुलिङ पोबादा आर्को ग्लेठिम युद्ध भूमिरी पोबारिन चु घ्लारी खाबा आहिन याङ चु घ्लारी मोकोन्दा राङला जिम्मेवारी थेन गिक तादोबा ताम थान्बादा मोइजेन लाबारी खाबा हिन्ला बिसी काइब्लोन से सुङबा मुला जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघला दस्तावेजरी ज्यावा छिक्री जेखेन थानबारी आता सुङबान काइब्लोन साहसे ह्याङला युर्ला मिनी कादेदा रेम रेम दोसी नोङबा से कादे जेखेन सोबा ग्याम्री बोर्बा गे आलाना राङला भविष्य सोबा अफसर नोन पिन्दोला बिसी सुङबा मुबा निबा भदौ चुइला कुनु रसुवाला भोटे कोसिरी खाबा भाल ग्याम ताबा छेतीला ताम थान्छिबान काइब्लोन से दाते नोन लानन दिमथेमे दिम आखामा राङला मिनिदा ब्रान्सी चिबा मुला कादे मिनी लेदो साफ्रा युङबा क्युई नाङरी राङला मिनी माइबान मुला बिसी सुङबा मुला खलाइला लुई दारेम खाइमाइ स्यापारी आखाम सुङबान काइब्लोन साहसे होजा चाम कादे सडक ग्यालाम लोफखाङ दिम राङबा राङ सोबारी खेती लाबा सा छिन नाङदिन ब्योङसी निजी गोर्की हुल्से विकासला ग्यालाम चुङबान निमा ग्रेन अवरोध ताबामुला काइब्लोन साहसे नेपालला भोटे कोसी गान्धीरी खाबा भाल नेपालदा जेखेन आताना जाम्बु लिङदान चेताओनी हिनला बिसी सुङबान सुङबा मुला विपत्ति लिछा नेपालदा रो लाबारी खाम्बा मोकोन्दा थुजे छे सुङबान काइब्लोन साहसे ह्याङला ङेङ्गोर युल भारत थेन चिन्से सेमनाङ हेन्सेन खाम्दे रो लाजी स्यान्दो युल्कादे गेन्दुन कादे जाम्बुलिङलान मिनी कादे नेपाल थेन छ्याम राप्च्युजी थेनी कादे मोकोन्दान नेपाली मिनी ग्याम दोषी तिरेम थुजेछे सुङबा मुला काइब्लोन साहसे सन् 2015 नेपाल निबा गोर्खा नेपाली निबा गोर्खा साङ्गुल लिचा नोङबा से कादे सोबारी राङबान चु रेमनोन राङ कादेसे मोकोनला रो याङबा मानबा मुला बिसी सुङबा मुबा काइब्लोन साहसे सोम दिङ ङाचा संयुक्त राष्ट्र संघला लोनछेन्से नेपालला जोमो लुङमा थुम्री राप्सी जाम्बुलिङला छानो मान्बा ग्लिङगाङ कादे पगली दिवान निबा थेन चुसे जाम्बुलिङदान जलवायु पोबा खतराला सानग्युर पिनबा मुला बिसी सुङबा मुबा लिछारी काइब्लोन साहसे बुद्धसे ओन्बा घ्याम्री जाम्बुलिङ ब्राबारी खाम्गे ला पशुपति नाचे मोकोन्दा ज्याबा तागाई बिसी सुङबा मुबा नाम ताइबाला ताइबान लाबासे ताबारी खाम्बा जोखिमदा गोबान युलबाङ विपद जोखिम न्यूनीकरण थेन व्यवस्थापन प्राधिकरण से युल नाङला गोर निचुई डु जोङला ग्रेन सडक घ्यालाम कादे थेन मोटर सेङबारी बन्द लासी पिनबा मुला दिम्लोन खाङला प्राधिकरण से तिनी तेबा कागिर अनुसार जोङ प्रशासन गेजाङ कादे ग्याम खाबा विवरणी जोखिम राङबा सडक घ्यालाम कादे बन्द लाबा थेन मुन्द्री ब्रावा बस कादे सेङबारिन आपिनबा निर्णय लाबा खिला मौसम खेनपो कादे से चुधुरी लानुन तोबा गेबीमा स्यान्दो गेरी फिर्क्याप आथोनबारी थेन मुन्ला धुरी मोटर सेङबारी दिम आपिङबारी दिम्ब्लोन खाङसे मोकोन्दा पाङबा मुला खाजी बैनुन आपत्ताजी विसाम कि उद्धार लातोसाम विपद हटलाइन 12-34 नेपाल प्रहरी 100 सशस्त्र प्रहरी बल 11-14 थेन मौसम सम्बन्धी गोतोसाम 11-15 फोन लाबारी मोइजेन लाबा मुला
मौसम खेनपो राजन लामी छाने से दारेम नोन दाखाबा निरा नुप थुम्री लानन नाम ताइबारी खामला बिसी सुङबा मुला बंगाला खाडी रि थोनबा न्यून चापीय प्रणालीला प्रभाव से युलन हाङरिन नाम ताइबन मुला नेपाल मौसम विज्ञान विभाग से पाङबा अनुसार रेङेन धिनिरे आइतबार स्यार थुम्री मौसम रि सुधार खाबारी मराङसाइ नोन नुप थुम्री प्रणालीला प्रभाव चिसेदा मराङबा मुला असो चुइनिला कुनु हेन्से विषाम कोलेसे युल नाङरी मौसम झ्याबा ताबन निला बिसी विभाग से पाङबा मुला नाम लानन ताइबन मुबासे चेतावनी लाबा थुम्री भाल डुइथेन ब्लुम्बारिन खाम्बा ताबासे सच सतर्कतासी चिबारी मौसम बीत कादेसे मैजेन लाबा मुला चुराङलासिन बागमती प्रदेश ला ग्रेन ब्लोन किरण थापासे नाम ताइबन मुबासे बागमती प्रदेश ला मिनिदा सतर्कताबारी मैजेन लासियुबा मुला ग्रेन ब्लोन थापा मगरसे तिनी सानग्युर छिपान नाम ताइबाला ताइबन मुबासे ताबारी खाम्बा जोखिमदा घोषी सुरक्षित चिबान रेङबा यात्रा आलाबारी मैजेन लासियुबा मुला लुइथेन खाद्य स्वच्छता ब्लोन निसा मेहता से बर्खाला जोखिमदा गोबान ब्लोनखाङ सतर्क ताबान तयारी धुरी मुलाबिसी सुङबा मुला तिनी कागिर्गिक छिपान ब्लोन मेहता से दाते युल्ला लानन ग्लारी नाम ताइबान मुबासे भाल धुइथेन ब्लुम्बा राङबा विपद ताबारी खाम्ला बिसी ब्लोनखाङ सतर्क तासी तयारी धुरी चिबा मुला बिसी सुङबा मुला ब्लोन मेहतासे युल नाङला अस्पताल थेन लुई गेन्दुन दा नोन तयारी धुरी थान्बा मुला बिसी सुङबा मुला ग्रेन नाम ताइसी ढुई खामा बिपी राजमार्ग नोङबा मुला तिनी स्योरी बिपी राजमार्गला रोसी गाउँपालिका निस्त्री मुबा 482 थेन रोसी ब्रे घिमदिरी दुई खाबासे ग्याम नोङबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेदिङ काब्रेसे पाङबा मुला चुनोन घुङरी जालथेन मौसम विभाग से लाबा अनुमान दाच्यासी तिलमा मुना हेन्सेन बिपी राजमार्गला काभ्रे फलान चोक्री मुबा सडक घ्यालामका दे भन्द लाबा मुला जोङ प्रशासन गेदिमसे भाल धुइला दुइदा च्यासी दिनी रिनोन ग्याम डुङबारी खाम्सेदा मुला बिसी पाङबा मुला बिसामा रेङेन दिनीरे आइतबार दोना मुन्ला धुरी मोटर सेङबारी काब मुला चुराङलासिन रेदाङसेन नाम ताइसी टिसामा याम्बु उपत्यकाला बागमती थिएन विष्णुमती गान्धीरी ग्रेन भाल खाब मुला गान्धीरी भाल लेबान खाबा लिचा ताबारी खाम्बा जोखिमदा च्यासी सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा मुला सम्बन्धित निकायसे स्योङ गान्धीला खार्ख्युर भालसे ब्लुम्बारी खाम्बासे थे थुम्री आनीबारी सतर्क ताबारी थिएन सुरक्षित ताबारी मोइजेन लाबा मुला चुराङलासिन बेनी जोमसोम कोरला सडक घ्यालाम्री मुन्ला धुरी मोटर सेङबारी आयाङबा लो झ्याङ थुइबा राष्ट्रिय गौरवला बेनी जोमसोम कोरला सडक घ्यालाम्री तिलमा हेन्से रेङेन दोना मुन्ला धुरी मोटर सेङबारी आपिनबा ताबा मुला जोङ प्रशासन गेदी मुस्ताङसे गोर्की सूचना छिसी म्याग्दी थिएन मुस्ताङला मुर काभ्रे हेन्से कोरला मुर धोना न्यासे डुङ्यामा हेन्से सोला डुङ्यामा धोना मोटर सेङबारी आपिनबा ताबा मुला तिलमा मुना हेन्से ग्रेन नाम ताइसी सप्तकोशी गान्धीरी ग्रेन भाल खाबा लिचा कोशी भ्यारेजला गोर सोमचुई घिक म्राप ठ्वाङबा मुला तिनी स्योला चुई ह्यामा भाल्ला साताहा धाप्पा धुइरी कोशी भ्यारेजरी ग्रेन भाल खाबासे गोर निचुई घा म्राप ठ्वाङबा हिला चुराङलासिन दोलो दिनीला घिक ह्यामा दोषी देपेन भाल धाप्पा धुइ लिचा ग्रेन भाल खाबा से गोर सोमची घिक म्राप ठ्वाङबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेदिमला सूचना अधिकारी चन्द्र बहादुर खड्कासे सुङबा मुला सनम विभाग से लाबा लुङसुर छ्याम लानन नाम ताइबारी खाम्बा ताबासे चाबारी थान्बा बाली भण्डार लाबा अन्नारी ताबारी खाम्बा छेती ग्याम सावधानी किनबारी मोइजेन लाबा मुला मौसम पोबासे लामा सुन बाली राङबा से कादे सोना लाबारी सानाम बोन कादे द सतर्क ताबारी विभाग से पाङबा मुला काइब्लोन बालेन्द्र साहथेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घला लोन्छेन एन्टिनियो गुटरेस रूपतासी लिङमोलासिबा मुला संयुक्त राष्ट्रसङ्घला ब्रेचुई गिक्छा ग्रेन ह्वाल्डी पो किनबारी अमेरिकारी मुबा काइब्लोन साहसे ग्रेन ह्वाल्डी लिङमो थान्छ्युबा घाछा
राष्ट्र संगला घेजाङ्री लोन्छेन गुटरेस थेन रूप तास्युबा हिन्ला बिसी काइब्लोनला लोन खाङसे पाङबा मुला रूपतामा काइब्लोन साहसे नेपाल दा रो लाबारी लोन्छेन गुटरेस दा थुजे छे सुङबान लोन्छेनला घे दुई ज्याबा तागाई बिसी सुङबा मुला ओजा दुईरी लोन्छेन गुटरेसे भोटेकोसी विपत्री ताबा छेतीसे रङ कादेदा लानन आच्याबा घाम्बा मुला सुङबान जलवायुला ताम्री संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल थेन छ्याम मुला बिसी सुङबा मुला चुराङ लासिन रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल थेन संयुक्त अधिराज्य बेलायतला मोक्युल विकास च्याबा छ्याब्लोन क्रिस्टी म्याक रूप तासी लिङ्गमो लास्युबा मुला संयुक्त राष्ट्र संघला ब्रेचुई गिक्छा ग्रेन ह्वाल्डी पो किन्बा धुइरी संयुक्त राष्ट्र संघला गेचाङ्री रूप तामा थेनिका दे घुङ्री नेपाल बेलायत घुङला ब्रेलबाला ताम्री लिङ्गमो ताबा मुबा बिसी ब्लोन खाङला लोन खाङसे पाङबा मुला रोङसा ब्लोन शिशिर खनालसे अस्ट्रेलियाला रोङसा ब्लोन पेनी बोङ थेन नोन रूप तासी लिङ्गमो लास्युबा मुला संयुक्त राष्ट्र संघला घेजाङ्री रूप तामा थेनी कादे घुङ्री नेपाली तिलाई गाछा खाबा भाल ग्याम ताबा छेती थेन चु लिछा तलाबा उद्धार रहा थेन नोङबा सेकादे दोषी शोभा ताम्री लेङ्मो ताबा मुबा ला इन्द्रला भुइँबोलासी तिनी इन्द्र झात्रा प्रिबा धाङबान मुला दिङे दाङसे भादौ शुक्ल चतुर्थर्सीला कुनु चु प्रिबा याम्बु ललितपुर भक्तपुर धुलीखेल दोलखा थेन स्यान्दो जोङरिन दाङबा लाबा मुला भादौ शुक्ल द्वादशीला कुनु हनुमान ढोका गाछा धार्मिक रिम्ठिम अनुसार लिङ्गो क्याबा लिछा तिबा चु जात्रा ला लामोला भुइँबोलासी ब्रेरा दोना धाङबा लाबा मुला मोकवान पुर्ला सीमात स्योङसे भ्योङना लामा श्याम बहादुर स्याङतान सिबा मुला बकैया गाउँपालिका चुई घिक थेन मकवानपुर गढी गाउँपालिका घिक्ला मुरी सीमात स्योङसे भ्योङना लामा मकवानपुर गढी गाउँपालिका घिक ला श्याम बहादुर स्याङतान सिबा हिन्ला बिसी जोङ प्रहरी घेजाङ मकवानपुर से पाङबा मुला स्यान सिबान मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश के पश्चिमी भाग में भारी से अति भारी बारिश की है संभावना। सतर्क रहने का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने किया है आग्रह। बारिश के कारण ज्यादातर राजमार्ग हैं अवरुद्ध। सोमवार से मौसम में होगा क्रमिक सुधार। संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा को प्रधानमंत्री बारेंद्र शाह ने किया संबोधित। कहा जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तत्काल उठाए कदम। और भारत के सिक्किम राज्य स्थित रिम्बी गांव में आया भीषण भूस्खलन। अब समाचार विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में विकसित न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में 8 आश्विन से लगातार बारिश हो रही है। पिछले समय वर्षा प्रणाली पश्चिम की तरफ सरक जाने के कारण पश्चिमी क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और डूबान का जोखिम बढ़ गया है। ये जानकारी मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने दी। मौसमविद हरि प्रसाद दाहाल के मुताबिक अब कोशी, मधेश, बागमती प्रदेशों के पूर्वी हिस्सों में हल्की और मध्यम स्तर की ही बारिश होगी। मौसमविद रोजन लामिछाने के अनुसार पिछले 24 घंटे में लगभग पूरे नेपाल में बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि अभी और बारिश की संभावना है, इसलिए लोगों को अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने भी मौजूदा स्थिति को प्रतिकूल बताते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। महाशाखा के मुताबिक वर्षा प्रणाली कल रविवार तक सक्रिय रहेगी और सोमवार से मौसम में क्रमिक सुधार आने लगेगा। बारिश के साथ ही बागमती, गंडकी और कर्णाली प्रदेशों के हिमालयी क्षेत्रों में आज हिमपात भी हुआ है। लगातार बारिश के कारण आए बाढ़ और भूस्खलन से देश के प्रमुख राजमार्ग और सहायक सड़क खंड कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक रूप में अवरुद्ध हैं। बारिश के कारण नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड और पृथ्वी राजमार्ग का चितवन खंड अब भी अवरुद्ध है। दोनों सड़कों पर गुरुवार शाम करीब 8 बजे से भूस्खलन के कारण यातायात बंद है। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार जगह जगह लगातार पत्थर और मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह नहीं खोली जा सकती है। हालांकि दोपहर में सड़क को एकतरफा खोलकर रुके हुए वाहनों को निकाला गया। सड़क बंद होने के बाद गुरुवार से बड़ी संख्या में वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। लगातार भूस्खलन के जोखिम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने वाहनों के संचालन पर रोक लगा रखी है। पृथ्वी राजमार्ग और कांति राजमार्ग अवरुद्ध होने के बाद त्रिभुवन राजपथ पर समय निर्धारित कर बारी बारी से वाहनों का हेटौड़ा काठमांडू आने जाने का प्रबंध किया गया है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हैं और कई मार्गों पर रात में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पांचथर के तुम्बेवा में बाढ़ के कारण तमोर कॉरिडोर सड़क पूरी तरह बंद है। इलाम के मेची राजमार्ग और मेची कॉरिडोर पर 11 आश्विन तक शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात बंद रहेगा। उखलढुंगा के सिद्धिचरण लोकमार्ग पर भी बाढ़ के कारण यातायात प्रभावित है। धादिंग में कुछ स्थानों पर भूस्खलन के कारण पृथ्वी राजमार्ग और कालू पांडे राजमार्ग अवरुद्ध हैं। ललितपुर के कांति लोकपथ पर भी भूस्खलन से यातायात प्रभावित है। गंडकी प्रदेश के कई जिलों में 9 से 12 आश्विन तक रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ग्रामीण और जिला सड़कों पर यातायात बंद रहेगा। दांग और रोलपा के प्रमुख मार्गों पर भी रात में वाहनों की आवाजाही पर रोक है। पुलिस और प्रशासन ने आपदा का जोखिम देखते हुए अत्यावश्यक काम के अलावा रात में यात्रा न करने और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने का आग्रह किया है। बुधवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण सप्तकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने पर कोशी बैराज के 35 गेट खोल दिए गए हैं। आज शाम 5:15 बजे मापे गए जल प्रवाह के अनुसार बैराज में प्रति सेकंड 2,65,795 क्यूसेक पानी बह रहा था। इससे पहले दोपहर 4:14 पर 2,62,230 क्यूसेक पानी के प्रवाह पर 34 गेट खोले गए थे। सप्तकोशी में बाढ़ बढ़ने के कारण निचले तटीय और डूबान क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने तथा जोखिम वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की गई है। कोशी बैराज में कुल 56 गेट हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट न आएर दिक्क लाग्छ।
2: अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टेज।
1: भोल्टेज वॉइस ओभर LTE अब तपाईको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट, अझै जीवन्त।
2: SG भोइस क्वालिटी सँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
1: यस्तो अनुभव मानौ तपाईले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईको छेउमै हुनुहुन्छ।
2: र अझ रमाइलो कुरा,
1: फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पीड इन्टरनेट,
2: क्लियर कॉल्स र फास्ट इन्टरनेट एकै साथ।
1: सेवा सुचारू गर्न आफ्नो फोनमा #444 हैश डायल गर्नुहोस्।
3: 4G बोल्टे नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। पश्चिम नवलपरासी की सुस्ता गांवपालिका 5 स्थित थारू टोल में नारायणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने और बस्ती में पानी घुसने से करीब 78 परिवार विस्थापन के उच्च जोखिम में हैं। नदी बस्ती से सिर्फ 40 से 50 मीटर दूर तेजी से कटान कर रही है। जोखिम को देखते हुए इन परिवारों को सुस्ता के बड़का टोल, पहाड़ी टोल और सैनिक टोल समेत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। प्रमुख जिलाधिकारी दीपक राज नेपाल के अनुसार सुरक्षा निकायों की मदद से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पश्चिम नवलपरासी में बाढ़, भूस्खलन, डुबान और कटान के जोखिम को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, स्थानीय तह, रेडक्रॉस और अन्य संबंधित संस्थाओं को आपात स्थिति में तत्काल परिचालन के लिए तैयार रखा गया है। प्रशासन ने नदी किनारे और चुरे क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को आज न्यूयॉर्क में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने बाढ़ से हुई जनहानि और व्यापक विनाश का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में जोखिम बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री शाह ने पर्याप्त अनुदान आधारित जलवायु वित्त और जोखिम में रहे देशों के लिए अधिक सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि नेपाल का वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बेहद कम योगदान होने के बावजूद वो जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर झेल रहा है। प्रधानमंत्री ने नेपाल, भारत और चीन को शामिल कर हिमालय जलवायु लचीलापन तंत्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली, उपग्रह डेटा और विशेषज्ञता के आदान प्रदान तथा तीनों देशों के बीच आपदा प्रतिक्रिया में समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग मजबूत करने और जलवायु जनित आपदाओं से निपटने के लिए जोखिमग्रस्त देशों की क्षमता बढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच गुरुवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। महासचिव गुटेरेस ने भोटेकोशी आपदा में हुई जनधन की क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जलवायु मुद्दे पर नेपाल के साथ एकजुटता जताई। प्रधानमंत्री शाह ने नेपाल के प्रति समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद किया। बैठक में नदी किनारे रहने वाले लोगों के पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण और अति कम विकसित देशों की सूची से नेपाल के स्तरोन्नयन की समय सीमा बढ़ाने के लिए समर्थन जुटाने पर चर्चा हुई। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र के दौरान आज ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई बैठक में नेपाल ऑस्ट्रेलिया संबंध, आपसी हित और नेपाल में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान तथा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों पर चर्चा हुई। मंत्री खनाल ने आपदा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ऐतिहासिक पर्व इंद्रजात्रा के अवसर पर हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र स्थित गद्दी बैठक पहुंचकर यात्रा का अवलोकन किया। राष्ट्रपति पौडेल न्यूरोड स्थित युद्ध सालिक से पैदल गद्दी बैठक पहुंचे थे। उनके साथ उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधानमंत्री स्वर्णिम वागले, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रीय सभाध्यक्ष, मंत्री, सांसद और कूटनीतिक प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने गणेश, भैरव और कुमारी के रथों में फूल माला और दक्षिणा चढ़ाकर रथ यात्रा की अनुमति दी। इसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई। इंद्र यात्रा का आज मुख्य दिन है। इसी तरह तराई, मधेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू धर्मावलंबियों ने आज अनंत चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर अनंत सूत्र धारण किया। परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ मंदिरों में विशेष पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। भोटेकोशी होते हुए त्रिशूली नदी में आई बाढ़ से प्रभावित होकर अस्थायी शिविरों में रह रहे परिवारों को लगातार बारिश से और परेशानी हो रही है। गुरुवार से हुई शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी जारी है। खुले स्थानों पर लगाए गए टेंट और अस्थायी टहरों में पानी घुसने से प्रभावितों की दैनिक जिंदगी कठिन हो गई है। रसुआ से विस्थापित होकर नुवाकोट में रह रहे उत्तर गया एक के वड़ाध्यक्ष मान सिंह तामांग ने बताया कि टेंट में पानी घुसने से राहत में मिले खाद्य पदार्थ, कपड़े और अन्य सामग्री बचाना मुश्किल हो गया है। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण काठमांडू घाटी के कचरे के अंतिम प्रबंधन में समस्या आई है। काठमांडू महानगर पालिका के पर्यावरण प्रबंधन विभाग की प्रमुख सरिता राय के अनुसार बारिश के कारण सिस्टोल लैंडफिल साइट पर कीचड़ युक्त पानी बहने से कचरा ढुलाई और प्रबंधन प्रभावित हुआ है। उन्होंने लोगों से घर, दुकान और अन्य स्थानों का कचरा सड़क, सार्वजनिक स्थल, नदी नाले या खुले स्थानों में न फेंकने का आग्रह किया। स्थिति सामान्य होते ही कचरा संग्रह और ढुलाई नियमित होने की जानकारी दी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के सिक्किम राज्य के पश्चिमी सिक्किम स्थित रिम्बी गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भीषण भूस्खलन हुआ है। गुरुवार रात हुए भूस्खलन में मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों के साथ मलबा बस्ती की ओर आने से 30 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। कुछ मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त या ढह गए हैं। बिजली विभाग के सरकारी क्वार्टरों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। करीब 32 घर और 4 सरकारी क्वार्टर अब भी जोखिम में बताए गए हैं। पिछले 24 घंटों में युकसोम रिम्बी क्षेत्र में 224.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मलबे के कारण रिम्बी युकसोम और रिम्बी खेचो पलरी सड़क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और नदी नालों के पास न जाने तथा भारी बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पश्चिमी भाग में भारी से अति भारी बारिश की है संभावना। सतर्क रहने का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने किया है आग्रह। बारिश के कारण ज्यादातर राजमार्ग हैं अवरुद्ध। सोमवार से मौसम में होगा क्रमिक सुधार। संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने किया संबोधित। कहा जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तत्काल उठाए कदम। और भारत के सिक्किम राज्य स्थित रिम्बी गांव में आया भीषण भूस्खलन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।